0: डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
0: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिस कनक, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इस शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं

0: हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
2: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
1: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन

0: श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुनेंगे अनि सिटिम संगमो और अनि यांचन हमो से चंद बौद्ध भक्ति गीत। तो पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनि छिटिम संगमो और अनि यांचन लामू से चंद बोधभक्ति गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त होता है।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे है। श्रोताओं, अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे जिग्मे दर्जी और साथियों।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिग्मी दोरजी और साथियों से चंद लता की लोक गीतों का। इसी के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त होता है।
1: अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स, सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर।

0: पर खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया की स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स ओटीटी पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आज आप पीएम श्री जेएनवी तवांग के 9वीं कक्षा में पढ़ रही छात्र संगे छोजुम देरू से स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व विषय पर अपने विचार साझा करते हुए सुनेंगे। तो पेश है कार्यक्रम मेरी बात।
2: स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है, इसे अपनाना हमारी शान है। स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है, इसे अपनाना हमारी शान है। परंपरा और संस्कार से ही बनती है असली मानता हमारी। आकाशवाणी तवांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं कुमारी संगे छोजुम देरू, पीएमजी जेएनवी तवांग, कक्षा 9वीं की छात्रा, आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय स्थानीय संस्कृति और उसका महत्व पर है। हर समाज की अपनी एक अलग पहचान होती है। यह पहचान उसकी संस्कृति से बनती है। जब हम कहते हैं स्थानीय संस्कृति, तो इसका मतलब है कि हमारे गांव, शहर या प्रदेश की परंपराएं, रीति रिवाज, लोक कला, लोकगीत, पहनावा, त्योहार और भाषा, यह हमारी पहचान और गौरव को दर्शाती है। स्थानीय संस्कृति हमें अपने जड़ों से जोड़ती है। यह हमें बताती है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और उन्होंने हमें कौन से संस्कार दिए हैं। जब हम अपनी संस्कृति को अपनाते हैं, तो हमें अपने देश और समाज पर गर्व महसूस होता है। आज के आधुनिक युग में हम नई तकनीक और आधुनिक जीवन शैली अपना रहे हैं। यह जरूरी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी स्थानीय संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। कई बार हम विदेशी संस्कृति को अपनाने के चक्कर में अपनी भाषा और परंपराओं से दूर हो जाते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। स्थानीय संस्कृति का महत्व केवल हमारी पहचान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें नैतिकता, भाईचारे और एकता भी सिखाती है। हमारे त्योहार हमें मिलजुल कर रहना भी सिखाती है और हमारी परंपराएं बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्रेम करना सिखाती है। इसके अलावा स्थानीय संस्कृति हमारे देश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देती है। हस्तशिल्प, लोक कला, पारंपरिक भोजन और लोक नृत्य देश विदेश के लोगों को आकर्षित करते हैं। इससे पर्यटन बढ़ता है और लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। स्थानीय संस्कृति हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीना भी सिखाती है। हमारे कई रीति रिवाज पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हैं। जल, जंगल और भूमि की रक्षा हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हमें अपनी स्थानीय संस्कृति को बचाना है, तो इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, अपने त्योहार को पूरे उत्साह से मनाना चाहिए और अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि स्थानीय संस्कृति हमारी पहचान है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर अपनी संस्कृति को अपनाएं और उस पर गर्व करें। संस्कृति में ही बसते हैं संस्कार, संस्कृति में ही बसते हैं संस्कार, स्थानीय परंपरा ही है देश का सार। नई पीढ़ी को इसे समझाए, अपनी पहचान को जीवंत बनाए, भारत को सशक्त और मजबूत बनाए, देश के विकास में इसका मान बढ़ाए, देश के विकास में इसका मान बढ़ाए। धन्यवाद।
1: इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त होता है।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, अपेशे महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत सुनते हैं सिंगम फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है अजय गोगावाले ने।

अगला गीत सुनते हैं रबता फिल्म से अतीफ आसम की आवाज में। इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने और संगीत दिया है जैम 8 ने।

अगला गीत सुनते हैं गुडबाय फिल्म से अमित त्रिवेदी की आवाज में। इस गीत को लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आने ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत कुछ फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अगला गीत सुनते हैं रॉय फिल्म से मीट ब्रदर्स अनजान और कनिका कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है मीट ब्रदर्स ने।

अगला गीत सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से केके के आवाज में। इस गीत को लिखा है विशाल ददलानी ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं आरक्षण फिल्म से मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4 बजे है। श्रोताओं, अब पेश है बच्चों के लिए विशेष विविध कार्यक्रम बाल जगत, जिसे मंजुश्री विद्यापीठ तवांग के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं श्री लोपसम फेंदी जी। तो पेश है कार्यक्रम बाल जगत।

0: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा मासिक कार्यक्रम बाल जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार तथा टशीतेले। आज के हमारे बाल जगत कार्यक्रम में हमने आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में आमंत्रित किया है मंजूश्री विद्यापीठ के कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों को। तो बच्चों, आप सबका आकाशवाणी तवांग के इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: आज के इस बाल जगत कार्यक्रम में हमारे बच्चे आप सभी श्रोताओं को सुनवाएंगे मन कुल गीत, हिंदी कविता, कहानी, पहेलियां, छठे दलाई लामा के जीवन परिचय, देशभक्ति गीत। मेरा नाम लोफसांग फंदे है और मैं मंजूश्री विद्यापीठ में बोटी पढ़ाता हूँ। तो मेरे साथ कुछ बच्चे और एक शिक्षिका भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारी आकाशवाणी तवांग के श्रोताओं को अपना अपना परिचय दें।
2: नमस्ते और ताशी दिले, मेरा नाम थाम युटन है और मैं मंजूश्री विद्यापीठ की EVS अध्यापिका हूँ।
3: गुड इवनिंग टू ऑल लिसनर्स, माय नेम इज ट्रशि यांगजोम, आई एम इन 9th स्टैंडर्ड स्टडिंग एट मंजूश्री विद्यापीठ तवांग।
4: हेलो एवरीवन, आई एम कंचन लमो स्टडिंग इन क्लास 10 एट मंजूश्री स्कूल।
5: माय नेम इज ऋषि खंडू, आई एम स्टडिंग इन क्लास 10 एट मंजूश्री विद्यापीठ तवांग।
6: मेरा नाम तुप्तन गिलचन है, मैं 7th कक्षा में पढ़ता हूँ।
7: मेरा नाम रिशपुंज है और मैं 6th कक्षा में पढ़ता हूँ।
8: माय नेम इज पेमा रिंचिंग, आई एम स्टडिंग इन क्लास 10 एट मंजूश्री विद्यापीठ तवांग।
9: मेरा नाम डुंडुक दोरजी है, मैं 6th कक्षा में पढ़ता हूँ।
10: मेरा नाम तेंजिन यांगडन है और मैं 6th कक्षा में पढ़ती हूँ।
11: मेरा नाम तेंजिन सोमू है और मैं 8th कक्षा में पढ़ती हूँ।
12: मेरा नाम बेमा यांसुम है और मैं 8th कक्षा में पढ़ती हूँ।
0: आप कार्यक्रम शुरू करने से पहले, जैसे आप सबको पता है कि हम कुछ भी कार्यक्रम शुरू करते हैं तो पहले अपनी मन कुलगीत गाकर कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो क्यों ना हम भी यहाँ आज अपने कार्यक्रम को मन कुलगीत के साथ शुरू करें। तो चले सब मिलकर मन कुलगीत गाते हैं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा मन खुल गीत गाया। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से कोई एक हिंदी कविता सुनाए। तो बच्चों, आप लोग में से कोई ऐसा है जो हिंदी कविता सुनाना चाहते हैं?
1: मैं सुनाऊंगी सर।
0: ओके, तिंजिन यांगजुन जी ना आपका नाम, जो तिंजिन यांगजुन जी आप सबको हिंदी कविता सुनाएंगे।
1: मेरा कविता का शीर्षक है सूरज जीवन है धरती का। हंसकर रोज जगाया करता सबको प्यारा सूरज, गाने चिड़िया के लाता है रोज हमारा सूरज। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक बोला, तेज दौड़ने लगता है फिर बना आग का गोला। शाम डूबने से पहले मन झिलमिल सा हो आता, जाते जाते भी अंबर को आशा से रंग जाता। सूरज सिखलाता है हमको बड़े सवेरे उठना, प्यार भरे नन्हे फूलों सा हंसते गाते खिलना। पूरे काम करो दिन भर के कभी न छोड़ो कल पर, सूरज सिखलाता है पंथी सा चलते रहो जन्म भर। सूरज बिन सब और अंधेरा लगता सब कुछ फीका, इसलिए तो कहते सूरज जीवन है धरती का। धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद तिंजिन यांगजुन जी, आपने अच्छी कविता सुनाई है। तो आज हमारे साथ यहाँ मैडम लमयुजन जी भी हैं, तो मैं मैडम लमयुजन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन बच्चों को एक सुंदर सी कहानी सुनाइए।
2: नमस्ते, मैं आज इस बाल जगत कार्यक्रम का फायदा उठाते हुए कुछ शब्द बच्चों की सुरक्षा यानी चाइल्ड सेफ्टी पर कहना चाहूँगी। जैसा हम जानते हैं, बच्चे हमारी आने वाली नई पीढ़ी है जो हमारे समाज को ही नहीं बल्कि पूरे देश को आगे बढ़ाएगा। तो उनकी सुरक्षा करना और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जागरूक करना हम सब लोगों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसी बात पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस कहानी की शुरुआत एक प्यारी लड़की से होती है जिसका नाम रिया था। वह हर रोज की तरह स्कूल छुट्टी होकर घर की ओर जाने लगी, तभी एक अनजान आदमी उसके पास आता है और प्यार से उसे बहुत सारी मिठाई देकर अपने गाड़ी में बैठने को कहता है। रिया को अपने माँ की पहली सलाह याद आई, अगर कोई अनजान आदमी आपको कुछ दे तो मना करे और ना ले। रिया ने मना किया और अपनी घर की ओर चल दी। वह आदमी फिर से रिया को अपने साथ चलने को कहता है। अब रिया को बेचैनी से होने लगी। रिया को फिर अपनी माँ की दूसरी सलाह याद आई, अगर आपको किसी के साथ बेआरामी महसूस हो तो आप कोई अपने पहचान वाले के पास जाएं। रिया ने यह सोचकर जल्दी से पास वाली दुकान में गई जहां से रिया की माँ अक्सर सामान लाई करती थी। रिया को देखकर दुकानदार उसे बैठने को कहता है। दुकानदार रिया को पूछता है, क्या हुआ बेटा, इतनी घबराई?

0: हुई क्यों लग रही हो? रिया बोली, एक अनजान आदमी मुझे अपने गाड़ी में बैठने के लिए तंग कर रहा था। दुकानदार यह सुनकर रिया की माँ को फोन करता है। थोड़ी देर में रिया की माँ वहाँ आ जाती है। दुकानदार का धन्यवाद करते हैं और माँ बेटी दोनों घर की ओर जाते हैं। घर पहुंचकर रिया की माँ ने उसे अपनी समझदारी के लिए शाबाशी दी और उसे हमेशा अपने आसपास होने वाली गतिविधि से सतर्क रहने का सुझाव दिया। जिस तरह रिया ने अपनी समझदारी से काम लिया, उसी तरह बच्चों भी अपनी समझदारी से काम ले। और मैं माता पिताओं से भी अनुरोध करूंगी कि वे अपने बच्चों के सतर्क रहने का सुझाव दें और अपनी सुरक्षा के बारे में बताएं। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या समझ आया?
1: किसी अनजान आदमी के साथ अगर हमें बेआरामी हो तो उनके साथ नहीं जाना चाहिए और अपने आसपास हो रही चीजों का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमीरुद्दीन जी, आपने चाइल्ड सेफ्टी से संबंधित काफ़ी अच्छी कहानी सुनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड सेफ्टी के बारे में आप लोगों को जानकारी है ना?
1: जी सर।
2: अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से कोई एक ऐसा छात्र जिसकी आवाज़ बहुत मीठी हो, कोई ऐसे छात्र गाना सुनाए। तो आप लोग में से कोई ऐसा है जो गाना सुनाना चाहते हैं?
3: मैं कहूं जी सर, मेरा नाम पेमा यांसुम है।
2: जी पेमा यांसुम जी, आप एक गाना सुनाएंगे, तो आप लोग ध्यान से इस गाने को सुनिए।

0: थैंक यू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पेमे यांगजुन जी, आपने बहुत अच्छी गाना गाए हैं। अब हम लोग पहलियां भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग में से कोई एक पहलियां पूछे। तो आप लोग में से कौन पूछेंगे पहलियां?
2: मैं पूछना चाहती हूं सर।
1: तो टशी यांगजुन जी आप लोग को पहलियां पूछेंगे, तो आप इनकी जो पूछे गई पहलियों का आंसर देना है, जवाब देना है। आप लोग ध्यान से सुनकर भी इनका जवाब दीजिए। हाँ
3: जी सर।
2: तो मेरा पहला पहली है, वह कौन है जिसका पेट फुला हुआ है मगर वह दवाई नहीं खाता और दिन रात बिस्तर पर ही लेटा हुआ रहता है?
4: तकिया।
2: सही उत्तर है, इसका उत्तर है तकिया। तो मेरा दूसरा पहली है, एक फूल यहाँ खिला, एक खिला कोलकाता, अजब अजूबा हमने देखा, पत्ते के ऊपर पत्ता।
4: हमको आते हैं आंसर, पत्ता गोभी।
2: सही उत्तर, पत्ता गोभी। तो मेरा तीसरा पहली है, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता है लेकिन कभी नहीं थकता?
4: मैं बोलना चाहती हूँ, समय।
2: सही उत्तर, समय।
1: बहुत बहुत धन्यवाद टशी यांगजुन जी, आपने काफी

0: जी पहेलियाँ पूछी। पहेलियाँ हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पहेलियाँ जो है हमें मनोरंजन के साथ साथ हमारे मन को सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं भी आप लोग से एक पहेलियाँ पूछना चाहता हूँ, तो आप लोग तैयार हैं?
1: जी सर।
0: अच्छा, अभी जो दलाई लामा जी है वो 14वें दलाई लामा जी है ना, तो आप लोग को एक पता है कि एक ऐसा भी दलाई लामा हुआ है जिन्होंने हमारे मौन क्षेत्र में जन्म लिया है।
1: जी सर।
0: बहुत अच्छा, तो वो कौन सा दलाई लामा है जिन्होंने हमारे मौन क्षेत्र में जन्म लिया था?
1: सिक्स दलाई लामा।
0: बिल्कुल सही, सिक्स दलाई लामा। सिक्स दलाई लामा का नाम क्या आप लोग को पता है?
1: जी सर।
0: तो बताइए आप लोग, सिक्स दलाई लामा जी का नाम क्या था? बिल्कुल, ग्यावा त्सायांग ग्यात्सो। तो ग्यावा त्सायांग ग्यात्सो के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को पता है कि ग्यावा त्सायांग ग्यात्सो जी के पिताजी का नाम और माताजी का नाम क्या था?
1: जी सर।
0: तो बताइए कि उनके पिताजी का नाम क्या था और माताजी का नाम क्या था?
1: लामो।
0: बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को सिक्स दलाई लामा के बारे में बहुत जानकारियां हैं। तो इसके बाद जो दलाई लामा के जीवन में आगे क्या हुआ, क्या आप लोग इसके बारे में पता है?
1: नो सर।
0: कोई बात नहीं, आप लोग को सिक्स दलाई लामा जी के जीवन में आगे क्या हुआ इसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आज इस स्टूडियो के माध्यम से सिक्स दलाई लामा यानी छठे दलाई लामा जी के जीवन काल के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगा। तो जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सिक्स दलाई लामा जी का नाम त्सायांग ग्यात्सो है। जी बिल्कुल सही है, और उनका जन्म 1683 में उड़गिलिंग में हुआ था, जो कि हमारे मंजूश्वरी स्कूल से कुछ ही दूरी पर है। तो सिक्स दलाई लामा जो है बिल्कुल सामान्य परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन सिक्स दलाई लामा जो है यानी कि जो बच्चा जो पैदा हुआ था वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वो अन्य बच्चों से काफी हटकर था। उन्होंने मात्र 2 साल में ही यह कहना शुरू किया था कि मेरा नाम मावांग लोफसंग ग्यात्सो है, मुझे पोतला जाना है, उइसंग प्राण पूरा मेरा है, वगैरह वगैरह कहना, और जो बचपन में ही जो पूजा पाठ करना ये सब करते थे। तो इन चीजों को देखते हुए उनके माता पिता और यहाँ के लोगों को लगा कि ये कहीं ना कहीं एक बड़े लामा का इंकारनेशन है यानी कि पुनर्जन्म लिया है। लेकिन दूसरी ओर उन्हीं के मामा यानी कि हम मुनबा में कहते अजंग, अजंग जो है सिक्स दलाई लामा के परिवार को काफी नफरत करता था। इसलिए यहाँ के बुद्धिजीवियों को ये भी लगने लगा था कि कहीं ये अजंग जो है, मामा जो है, ये बुटानिस लोगों के साथ मिलकर सिक्स दलाई लामा जी यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ था 2 साल के बच्चे था, तो उनको हत्या ना कर दे। तो इसलिए यहाँ के बुद्धिजीवियों ने इस खबर को यहाँ से सोनाजोंग में भेजना काफी उचित समझा, क्योंकि उस समय में हम लोग तिब्बत के अंडर में थे। तो यहाँ भी जो भी सुख दुख जो भी करना जो भी सूचना देना होता था तो सोना चोंगबन को देता था, और सोना चोंगबन के द्वारा फिर यहाँ पोतला में जो कि वहाँ देसी साई क्या सो है जो भी अपना तिब्बत का है उसको दे के फिर अपना जो समस्या है उसको सुलझाते थे। तो इस तरह से करके यहाँ के बुद्धिजीवियों ने भी सोना चोंगबन को ये खबर को दिया कि यहाँ एक ऐसा शिशु है, यहाँ एक ऐसा बच्चा है जो खुद को एक लामा होने का दावा कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ आइए और इसके ऊपर पूछताछ करें। तो इस तरह से करके इस खबर को तिब्बत में तेसी सांगी ग्यात्सो तक पहुंचा। तेसी सांगी ग्यात्सो उस समय तिब्बत का हेड हुआ करता था, आजकल जो प्रेसिडेंट होते उसी तरह से तेसी सांगी ग्यात्सो उस समय हेड हुआ करता था। तो तेसी सांगी ग्यात्सो ने इस खबर को सुनते ही वहां से अपने आत्मियों को भेजा कि आप लोग वहां जाइए, तावांग में जाइए और देखिए कि जो बच्चा है वो कैसा है। इसके बाद वे तिब्बत से यहाँ बच्चे को देखने के लिए आए, और आने के बाद जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये बहुत डर रहता था कि कहीं इसके मामा इसको हत्या ना कर दे, इसलिए बहुत ही जरूरी था कि इसको जल्दी से जल्दी यहाँ से एक सुरक्षित जगह ले जाएं। तो इसलिए यहाँ से मात्र 2 साल में जो छठे दलाई लामा जी हैं उनको यहाँ से शहूक ले जाया गया। शहूक यानी अभी तो तिब्बत के अंडर में है यानी कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर, इतना ज्यादा दूर नहीं, वहां ले जाके रखा। तो इसके बाद जब 3 साल के हुए दलाई लामा जी, सिक्स दलाई लामा जी 3 साल के हुए, तो वहां से तिब्बत से फिर क्या सच में छठे दलाई लामा है कि नहीं ये जांच पड़ताल करने वालों एक जो ग्रुप होते हैं उनको भेजा गया कि आप लोग वहां जाके देखें।

0: कि या क्या सच में ये छठे दलाई लामा हैं या नहीं है। तो इस तरह से करके जब सिक्स दलाई लामा जो 3 साल के थे तो वहां तिब्बत से उनको फिफ्थ दलाई लामा का क्या सच में री इनकारनेशन है कि नहीं ये पूछताछ करने के लिए आया। तो पूछताछ करने के लिए आते समय एक दलाई लामा का री इनकारनेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक प्रोसेस होता है। तो वो जो पूजा पूरा प्रोसेस किया तो इस प्रोसेस में ये होता है कि जो भी इससे पहले के जो 5वें दलाई लामा जी के जो भी सामान होते हैं जैसे कि टमरू हो गया, जो माला हो गया, उसका जो भी जो पेचा हो गया, पोती हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर आते थे अपने साथ। और इन्हीं के साथ साथ फिर उसी सामान का सेम टू सेम एक सामान भी वो लोग नकली सामान भी उन लोगों के साथ लेके आते थे। तो उसके बाद यहाँ आने के बाद फिर जो शिशु है 2 साल 3 साल के बच्चे हैं उनको ये एक पहचान करने देता था कि इनमें से कौन सा पूर्व दलाई लामा है, उसका सामान असली सामान जो कौन सा है उसको पहचान करने देता था। तो इस तरह से इस करते करते 6वें दलाई लामा जी ने इस प्रोसेस को पूरा किया। तो इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद दलाई लामा की जो पहचान करने वाले थे उनको विश्वास हुआ कि हाँ यही 6 दलाई लामा है। तो इसके बाद जो 3 साल में 6 दलाई लामा का जो री इनकारनेशन है वो रिकॉग्नाइज हुआ। लेकिन इसके बाद आप वो 6 दलाई लामा हैं तो फिर उनका पैलेस जो है पोतला है, पोतला में उनको जाना चाहिए और पोतला में जाकर उनका फिर पढ़ाई अध्ययन होना है। लेकिन इस बीच तिब्बत में राजनीतिक तनाव के चलते 6वें दलाई लामा को पोतला नहीं ले जा सका, तो इसलिए 15 साल तक दलाई लामा को वहीं पर रहकर फिर उनके अध्ययन जो वहीं पर करना पड़ा। तो ऐसे करते करते लास्ट में जब वे 15 साल के हुए तब तिब्बत से उनको पोतला ले जाने के लिए आए। तो पोतला गए और पोतला जाने के बाद फिर परंपरा अनुसार दलाई लामा जी अपना पद ग्रहण किए और उसके बाद जो आगे जो उसका पढ़ाई लिखाई था, जो अध्ययन करना था वो जारी रखा। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय में तेसी संगी ग्यासो और हसांग हान के बीच एक बहुत बड़ा अनबन चलता था। अनबन इतना चलता था कि तेसी संगी ग्यासो जो भी कार्य करे तो हसांग इसको गलत ठहराते थे। तो इस तरह से करते करते बाद में 6 दलाई लामा भी निराश हुए, वे काफ़ी दुखी हुए। इसके बाद उन्होंने आगे उसका पढ़ाई करना था, अध्ययन करना था, उसको फिर उन्होंने करना छोड़ दिया। इसके बाद दलाई लामा तिब्बत में जो भी धार्मिक कार्यक्रम होता था उसमें शामिल नहीं हो गए, फिर अकेला बैठना ये सब करते थे। तो इस चीज को देखते हुए लजांग हान ने इस चीज का फायदा उठाते हुए ये कहा कि ये जो 6वें दलाई लामा जो है ये जुड़ा दलाई लामा है, ये कहते हुए उनको पद से हटाना चाहिए, ये कहते हुए उनको 6 दलाई लामा को पद से हटा के जो अपना बेटा है उनको 6 दलाई लामा के पद पे बिठाया। तो इस तरह से जब 6 दलाई लामा को पद से हटाया तब उसको फिर चीन की ओर निकाल दिया, यानी कि नेश निकाला कर दिया। तो जब दलाई लामा 6 दलाई लामा जी चीन की ओर रवाना होते थे तब अचानक रास्ते में बीमार हो गए, फिर वहीं पर उनका मृत्यु हो गया, यानी कि 23 साल में दलाई लामा जी का मृत्यु हो गया। लेकिन खुशी की बात यह है कि 6वें दलाई लामा ने अपने जीवन काल में एक ऐसा छाप छोड़ दिया जो आज भी पूरे तिब्बत समाज में बहुत मशहूर है। क्या आप लोगों ने संगयांग गुरलू के बारे में सुना है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप लोग संगयांग गुरलू के कुछ श्लोक सुना सकते हैं?
1: मुझे आते सर।
0: बहुत अच्छी बात है। तो संगयांग ग्यासो के गुरलू 1-2-3 श्लोक सुनाई तो।
1: माके आमे शेरे इला खोरखोर जेजुं।
0: बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को छाया ग्यासो के बारे में तो जानकारी है ही है, साथ ही साथ उनके जो श्लोक है उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों को याद है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये था जो मेरा कहानी है, जो कि हम एक मनबा होने के नाते हम लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक देशभक्ति गीत गाएं। तो आप लोग तैयार हैं?
2: जी सर।
0: तो आप लोग एक देशभक्ति गीत गाइए।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छी देशभक्ति गीत गाए। मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग स्कूल में योगा करते हैं?
1: जी सर।
0: बहुत अच्छी बात है, योगा आजकल के ज़माने में बहुत बहुत ज़रूरी है, योगा हमारे सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों के स्कूल में योगा आप लोगों को कौन सिखाते हैं?
1: टिकी ड्रमा मैडम।
0: बहुत अच्छी बात है, तो टिकी ड्रमा मैडम आप लोगों को हर दिन योगा सिखाते हैं ना?
1: जी सर।
0: तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग क्या क्या योगा करते हैं?
2: जी सर, हमारे स्कूल में वृक्षासना, हलासना, शल्वासना, हनुमानासना, नटराजासना ये सब करते हैं।
3: जी सर, हमारे स्कूल में पर्वतासना, परिग्रहासना, पाथहस्तासना और उसके साथ साथ सूर्य नमस्कार भी करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग फिर अपने स्कूल में जो इंग्लिश है, हिंदी है, इन सब्जेक्ट के अलावा और बॉडी भी आप लोग सीखते होंगे ना?
1: जी सर।
0: अच्छा, तो बॉडी आप लोग सीखते हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत भक्ति गीत भी गाते होंगे।
1: जी सर।
0: तो क्या आप लोग एक बहुत भक्ति गीत सुना सकते हैं?
1: जी सर।
0: तो आप लोग एक बहुत भक्ति गीत सुनाइए।

0: धन्यवाद। अब हमारा बाल जगत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इसका समाप्ति लमीटन मैडम जी करें।
1: धन्यवाद लुफसंग फेंदे सर। अंत में मैं पूरी मंजुश्री फैमिली की ओर से आकाशवाणी तवांग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जो उन्होंने हमें इतना अच्छा मौका दिया इस बाल जगत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आशा करती हूँ आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह की कार्यक्रम करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, धन्यवाद सभी बच्चों को। नमस्ते।
2: नमस्ते।
3: इसी के साथ ही कार्यक्रम बाल जगत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसमें आज आप सुनेंगे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल। तो पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से ख्याल। इसी के साथ ही कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहे।

ये आकाशवाणी है, अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के

2022 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि 2,80,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, फिजियोथेरेपी, मनोरंजन और अन्य आवश्यक सहायता सुविधाओं का लाभ मिला है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का एक इकोसिस्टम है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर ब्रिक्स सत्र में अपनी समापन टिप्पणी के दौरान उम्मीद जताई कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा। उन्होंने सभी परिणामों को समय सीमा के भीतर ऐसे कामों में बदलने की जरूरत पर जोर दिया जिनका जमीनी स्तर पर असर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्रिक्स का ढांचा कागजी कार्रवाई से आगे बढ़कर असल जिंदगी में ठोस असर डाले। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने उनकी सक्रिय भागीदारी और बहुमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके महत्वपूर्ण विचारों और सुझावों ने सहयोग को व्यापक और गहरा बनाया है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती अहमियत, खुलेपन और समावेशिता का सबूत है। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि महामारियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं ने यह दर्शा दिया है कि परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उन्होंने कहा कि इसलिए ब्रिक्स देशों ने इस समूह के भीतर लचीलापन और संकटों से निपटने की क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया है। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आयोजित सत्र में प्रधानमंत्री ने चुनौतियों की समय पर पहचान, पहले से तैयारी और तत्काल कदम उठाने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स MSME सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा शहरों के बीच बेहतर तौर तरीके को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है। श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है जो स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को अधिक विश्वसनीय, कुशल और सुलभ बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ब्रिक्स मालवहन आपूर्ति श्रृंखला सहयोग प्रारूप आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विश्वसनीय और सुदृढ़ बनाने में मदद करेगा। नवाचार के तहत ब्रिक्स इंक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने नए और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप नवाचार कोष का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर से किसानों के लिए नए अवसर सृजित होंगे जिसके जरिए AI, भूस्थानिक तकनीक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक जरूरतों के अनुकूल बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोरमात तोकाएव के

0: साथ द्वीपक्षीय बैठक की। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बैठक की। प्रधानमंत्री पिछले दो दिन से दुनिया भर के नेताओं के साथ लगातार द्वीपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। वे आज दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। इन बैठकों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने, आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा करने का अवसर मिलने की आशा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्रनाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि जतेंद्रनाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। उन्होंने कहा कि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल, देशभक्ति और अदम्य साहस की एक अनूठी मिसाल रही है। श्री शाह ने कहा कि जतेंद्रनाथ दास का सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान ब्रिक्स देशों द्वारा अपनाई गई नई दिल्ली घोषणा पत्र की सराहना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रियसस ने सोशल मीडिया पोस्ट में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों और महामारी समझौते के रोगापनों और उनके अनुवंशिक डेटा तक वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं की पहुंच और लाभ साझाकरण अनुबंध पर वार्ता के सफल समापन के प्रति वचनबद्धता की प्रशंसा की। श्री घेब्रियसस ने तपेदिक को समाप्त करने, स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक चिकित्सा को एकीकृत करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के ब्रिक्स देशों के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने शिखर सम्मेलन में गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई स्थित एथियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ज्ञान रात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है। इसका प्रकाश पूरे विश्व को दिशा देने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि ज्ञान की इस चिरस्थायी विरासत ने भारत को अनेक विदेशी आक्रमणों के बावजूद अपनी पहचान और सभ्यतागत निरंतरता को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। श्री शाह ने कहा कि भारत की आत्मा को कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसकी स्मृति इसके इतिहास, भाषा, संस्कृति, अभिलेखागार और परंपराओं में जीवित है। उन्होंने एथियाटिक सोसाइटी से आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपने ज्ञान के खजाने को देश भर के लोगों तक पहुंचाने का आग्रह किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि 2,80,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आश्रय, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, फिजियोथेरेपी, मनोरंजन और अन्य आवश्यक सहायता सुविधाओं का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि वृद्ध व्यक्तियों की देखभाल और आवश्यक सहायता को सुदृढ़ करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में 142 नए वरिष्ठ नागरिक गृह स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुगम्यता और आत्मनिर्भर जीवन को बढ़ावा देने के लिए 200 से अधिक शिविर आयोजित किए गए। इनमें 4,90,000 से अधिक लाभार्थियों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आने वाले पात्र वरिष्ठ नागरिकों को व्हीलचेयर, श्रवण यात्रा, चलने की छड़ी और चश्मे सहित लगभग 23,93,000 निःशुल्क सहायक जीवन उपकरण वितरित किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ने कहा कि ये उपाय सुलभ देखभाल, बेहतर कल्याणकारी अवसंरचना और ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय नारंग गोया। Prime Minister Narendra Modi today noted that the trust of Global South nations in BRICS has grown because their voices are heard and experiences are respected. He opined that the strength of BRICS lies in diversity and cooperation. Addressing the open session of BRICS,

tu ke tamsun je cawakan pray ene jaga wa ne le santi ni niya kai ni ne desh sacho otso sus ti tiri ti ngato wa desh nani otso success ye kebal mo se jang ja ni ha cha to ne za tin ni je ni niya ne kebal mo se jang ma ja ni ichi ten says kong ga de kong ni kilu lang ni ne da cha ni sem shin su ka sin ma je yu ti ne ti je ये काम मुझे ले सकते हैं तो इस समय से क्या चाहे मुझे थोड़ी नहीं है उस ले समो उस क्या समो चु यो तो हिम्मत है इसे यो लोग हिम्मत है तुम कौन कह दे कि मैं किलो लंग है ये सिम कितना चल गया ये सिम किलो समो तो यो लोग हिम्मत है सिम थमा तो नहीं पिक्चर वो लाने नहीं पाल बा नहीं क्यों ना सीधे नहीं है उस क्या चाहो कुंभ ले चेकिन सी चेने चेने है yondaki shuwa tana nyamnya shindane nyamnya nga hami tape tonandu che lenze lakmo pongpa tongnya tan nga kei mik nyan topu chiki nga nasi che tanga tongtang nanya che lenze yigi nyanga tango kachinga tongpa kachina buyumu yigi yigi chiki buyumu che potishara pongyumu ziyumu ay nga nasi che yinya che lenze lakmo pongpa tongnya taasi shu che चिल्ला छोरी मुनारे चाव पंडोले मरा वा सत्यंगा ने मिले इचे या चाहिए हुए मरता ता यार चे न्यूट के ना शे शोगु नहीं सम यार के यू ना चिल्ला थे शो माना सम वो तो क्या था निगो चाहिए ने चिल्ला पिशो या मानी है चिल्ला ला छोरी मुनारे ने यस इचे मरता सत्य ने याना ना शासन सा वो तो क्या है नहीं याना लेंग से छाप दे यूनी ना याना लेंग गए ना ला नहीं खुलापन नहीं, लामे इत लेंच सांडा क्या है, अने छांचे तो हिंदू नियस, इति मसातु लुए लुए सना पापे ताजां बुलने ना, लुए कांप सांडा क्या है, मनाये यार संजय शेयर शेडे नियस, कुछ हिंदू नियस, लुए सना पापे ताजां बुलने, छांचे इति कैसे, एन कोसुंगा चिल्ला चुबा शो नियस, कहे हिंदू ना कोसुंची लुए हाँ सेम इस उनसे जो कौसुम नहीं है तुम लिप्सी टिप्पण साउ कासी टिप्पण साउ अने सेम जो टिप्पण साउ न्यूज़ टिप्पण न्यूज़ दस ने छाते योजकी अने ये सर चिल्ला तबु नाम दे न्यूज़ निशुद्ध इन्हें कौसुम ना चिल्ला चुबा शो ने ताने ताता पाटू सर माटोई ना पंडित चल न्यूज़ ताने सेम जो पंचिशर चित्तेला कितु करना न्यूनी, सेवजामी कित्ते कुल न्यूनी, दुप्ते कुल न्यूनी, संचार्य पंडो युद्धांडा चिने यो न्यूनी, ताईस्की ये दाने चंचु मातोपानी, तादेशी तोर संग ये दें बचे, कुन्शाके संगे जेसुंशी, कुन्शाके तोपा, तोपा शेजी तोपा इनासे ये संग मेजे बातु जोपनांडे ऐने, रानी ठीनु संगे इन्हां संगे जब ना भी ओने वंशाके संगे जैसुं शी ये कांडा कांडा ड्रायंग रूम ये कागा साजे कागा गेटे नैने ले कांडा कांडू तेजां रूनी ये लुबा कच्चे सूटे नैने ले कांसल शंदो पशी ने ले का सी ओ इने मानम तंडा क्यों नैने समझा पंचे शे पंतो यू तंडा रा इन्होंने ते टोगो संगे ठप नहीं लेका सेव तो नहीं ने इस क्या वाला थम्चे तो आरे तो सेंचे थम्चे सांगे वाला मिनुशो ने वो हम ना उचिम जो टोगुन सांगे ठोकचो वो ने इसे तो न्यासो से उस ना सोंग्या काम के लिए केले मुन्नी बोल रांसी का ताचो टेटे समत ताचो या न्यासो से या या सनम साता उसकी लुभे ने आ त्याचा मुन्नी नया मुवी सेरा अपने सेरा पापा चंदी से पना से क्या वाला मुझे से जस जस उस उनके के उनके पंडम ताना क्या वाला मुझे उधर ते पेपर उनको शिंदे में आदम लुबा कंडर चौसम हासे के पो ऐ पेपर में शिंदे में आदम लुबा मैं सनम से मचा हुआ थी से बच्चे रासो यूं दी बच्चे रासो यूं तादें क्या वाला सायं के सो उधर ते पेपर में शिंदे में चंदी से मैं पेपर में शिंदे में आदम से सनम मचा हुआ थी दी के बच्चे मैं क्या उधर ते रासो यूं बोल ता 我说是我，我送黑色，一定要送下来。

0: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
1: सोचिए,
0: मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी देखा है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है। तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानियां।
2: मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:11 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेशे कार्यक्रम जरुखा। जरुखा में हम आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से आज एवं कल प्रसारित किए जाने

वाले कार्यक्रमों की जानकारियों से। तो चलिए पहले आपको आज के कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शिलेंद्र में सुनिए सिंगसूर मठ के अनी थुतिनवामू और साथियों से शिल्डन संबल हिंडुप और फर्जल अमजेल। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:00। 7:10 पर कार्यक्रम महफिले कवाली में सुनिए अलामा इकबाल से एक कवाली। तत्पश्चात 7:30 पर कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपात। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार आज शाम 7:45 पर। शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो फिल्म से एक देशभक्ति गीत। आज शाम 8:00 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए कुछ पुराने फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन आज शाम 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 9 आज रात 9:00। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 14 सितंबर 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार के साथ। तत्पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए पंडित जसराज से चंद हिंदी देवगीत कल दोपहर 2:30 पर। कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आनंद लीजिए हागे ताता और साथियों से चंद आपातानी आधुनिक गीतों का। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात। तत्पश्चात कार्यक्रम नारी संगीत में आनंद लीजिए चक दे इंडिया फिल्म से हेमा सरदेसाई, नीरजा फिल्म से कविता सेठ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल और उदित नारायण, केदारनाथ फिल्म से देव नेगी और आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्र के आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का। कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए जब तक है जहां फिल्म से हर्षदीप कौर, तुम मिले फिल्म से नीरज श्रीधर, क्रूक फिल्म से निखिल डिसूजा, थैंक गॉड फिल्म से जुबिन नौटियाल, जब वी मेट फिल्म से मोहित चौहान, मनमर्जिया फिल्म से एमी विक और शाहिद मालिया, बर्फी फिल्म से पपॉन और सुनिधि चौहान, छिछोरे फिल्म से तुषार जोशी, एक दीवाना था फिल्म से लियोन डिसूजा और सुजैन डिमेलो, हीरो फिल्म से मोहित चौहान और प्रिया पंचाल और राजनीति फिल्म से मोहित चौहान और आंतरा मित्र की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागरंग में सुनिए पंडित विश्व मोहन भट्ट से गिटार वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार कल शाम 4:45 पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथलेरी में सुनिए तवा मठ के पूर्व लोपन लमा केसा नुर्बू से फमे ढिलिन सपे नमथर उपन्यास का पहला भाग कल शाम 5:00। कल शाम 5:30 पर सुनिए श्री

सं तोपदेन द्वारा दैनिक मुख्य सूचना मनपा में शाम 5:35 में पर साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम थुटिन लपचा लेरिम सदा शाम 6:00 6:10 में पर कार्यक्रम जरोखा बौद्ध भक्ति गीतों का कार्यक्रम शिल्दिन लेरिम में सुनिए क्यांगो मटके अनिशी पेमा और साथियों से शिल्दिन थिमचोक लमचुपा कल शाम 6:20 में पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार कल शाम 7:00 कल शाम 7:10 में पर साप्ताहिक कार्यक्रम ग्रामीण प्रसारण कल शाम 7:30 में पर कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत में आनंद लीजिए सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान जब हैरी मेट सेजल फिल्म से अरिजीत सिंह और गदर 2 फिल्म से उदित नारायण आदित्य नारायण और मिथुन की आवाजों में चंद फिल्मी गीतों का आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार कल शाम 7:45 में पर कल शाम 7:55 में पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए फना फिल्म से एक देशभक्ति गीत कल शाम 8:00 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदबहा पुराने नगमों का आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन कल शाम 8:30 में पर तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 में पर तथा न्यूज एट 9 कल रात 9:00 कल रात 9:16 में पर आकाशवाणी तवांग के सभी प्रसारण समाप्त होंगे तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसार किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी इसी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा यहीं पर समाप्त होता है हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मनपा में कृपया हमारे साथ बने रहें।

I'm not going to be able to do that.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स समूह में मजबूती और लचीलापन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि महामारी, जलवायु आपदाओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटों ने यह दिखा दिया है कि आपस में जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति

0: मंत्री अब्दुल फतह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका और बरुंडी के राष्ट्रपतियों और नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। दुबई में महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला आज रात 8 बजे मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that BRICS diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Saying that BRICS is poised to enter its third decade, Mr. Modi asserted that the world now expects concrete results from the grouping and not merely ideas and commitments. He expressed confidence that BRICS would live up to these expectations through collective efforts. The Prime Minister also extended his best wishes to China as the next chair of BRICS. Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. The External Affairs Ministry today said the BRICS summit, which concluded in New Delhi today, produced a number of concrete and development-oriented outcomes. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Secretary Economic Relations in the Ministry, Sudhakar Dalela, said that more than 50 concrete outcomes had been achieved across various thematic tracks, describing this as a significant achievement of India's BRICS chairship. He said, BRICS has maintained a consistent position on the need for reform.

श्रोतो अभी आप सुन रहे थे अल्लामा इकबाल से कवाली। इसी के साथ ही कार्यक्रम महफिल कवाली यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपाठ। कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपाठ में आज आप सुनेंगे माया सुखथंकर से कोंकणी भाषा में एक गीत का पाठ। गीत के शीर्षक है हिमगिरी रे और इसे लिखा है लेखक

0: रमेश बालुसकार ने तो पेश है कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपात।
1: बच्चों, आज हम आपको कोंकणी में एक गीत सिखाएंगे। आज हमारे साथ माया जी आई हैं, वे आपको ये गीत सिखाएंगे। आपको पता है ये गीत किसने लिखा है? ये गीत लिखा है श्री रमेश वेलुस्कर जी ने और संगीत दिया है श्री सोमनाथ चारी ने। ये रचना राग किरवानी पर आधारित है। अच्छा बच्चों, पहले कागज पेंसिल निकालो और गाना लिख लो। शुरू करें। हिमगिरी रे, हिमगिरी रे, दो बार हिमगिरी रे, हिमगिरी रे, उत्तुंग तू मुक्त तू, उत्तुंग तू मुक्त तू, हिंद माये हिंद भुये मुकुट तू, हिंद माये हिंद भुये मुकुट तू। फिर से हिमगिरी रे, हिमगिरी रे। अब ये पहला अंतरा। मुक्त तुझे हड्डे आनी, मुक्त तुझे माथे, मुक्त तुझे हड्डे आनी, मुक्त तुझे माथे, निया मळबा कडे आसा तुझे नाते, निळ्या मळबा कडे आसा तुझे नाते। और फिर से हिमगिरी रे, हिमगिरी रे। अब ये दूसरा अंतरा। मुक्त तुका चोन हावी जाता मुक्त, मुक्त तुका चोन हावी जाता मुक्त, आनीक वठार जुळटा मुक्त ताये सुक्त, आनीक वठार जुळटा मुक्त ताये सुक्त। और फिर से हिमगिरी रे, हिमगिरी रे। अब ये तीसरा और आखिरी अंतरा। धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझी शान, धीरे तुझी शान। देखो, धीरे तुझे हड्डे आनी, धीरे तुझी शान, काळजानी ह्या फुलचो, काळजानी या फुलचो हिंद अभिमान, हिंद अभिमान। और फिर से हिमगिरी रे, हिमगिरी रे। अच्छा बच्चों, आपने इस गीत को ठीक तरह से लिखा है ना? अब इस गीत को किस प्रकार गाना है यह आपको माया जी सिखाएंगी।
2: बच्चों, ये गीत दीपचंदी ताल में निबद्ध है। इसका ठेका इस प्रकार है। धा धिन धा धा तिन, ता तिन धा धा धिन, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार। गाने की पहली पंक्ति लड़के और लड़कियां दो भिन्न प्रकारों में गाएंगे और दूसरी पंक्ति सब मिलकर दो भिन्न प्रकारों में एक साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रथम लड़कियां।

पहले दो बार सब मिलकर एक साथ इस प्रकार गाएंगे, दूसरी बार सिर्फ लड़के इस प्रकार गाएंगे।

इसी के साथ ही कार्यक्रम समुदाय गीत एवं गीतपाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

जोर दिया है। लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता पर हुए सेशन में श्री मोदी ने चुनौतियों की समय पर पहचान करने, उनके लिए तैयारी करने और तुरंत कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। उन्होंने आगे कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइंस तैयार की गई है। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि टेक्नोलॉजी और जरूरी खनिजों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल प्रगति में बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने टेक्नोलॉजी को अपनाने में समावेशिता पर जोर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के बिजली सेक्टर के लिए एक अहम उपलब्धि के तौर पर कल 33 केवी मियाओ खारसंग ट्रांसमिशन लाइन को सफलतापूर्वक चालू किया गया। यह अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न रीजन इलाके में बिजली कनेक्टिविटी को मजबूत करने और बिजली सप्लाई की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने बताया कि यह उपलब्धि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक 239 प्रोजेक्ट एलिमेंट्स में से 97 को सफलतापूर्वक चालू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मियाओ खारसंग लाइन के चालू होने से मियाओ दियान

खरसंग और आसपास के इलाकों को बिजली पहुंचाने वाला नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इलाके के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार होगा। अरुणाचल प्रदेश के 9 सदस्यों वाले मीडिया दल का गुजरात का एक हफ्ते का दौरा कल पूरा हुआ। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी ईटानगर द्वारा आयोजित इस दौरे में कई अहम संस्थानों और विकास परियोजनाओं को शामिल किया गया, जिनमें कोचरब आश्रम, साबरमती रिवर फ्रंट, सीईपीटी यूनिवर्सिटी,

0: ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे नई तकनीकों को भी देखा और अधिकारियों व संबंधित लोगों से बातचीत की। पीआईबी ईटानगर के ज्वाइंट डायरेक्टर उत्सव परमार ने कहा कि इस तरह के एक्सपोजर प्रोग्राम पत्रकारों को विकास की पहलों और उभरते सेक्टरों को सीधे समझने में मदद करते हैं और मीडिया सरकार के बीच तालमेल को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि पीआईबी ईटानगर अलग अलग सेक्टरों और पहलों को शामिल करते हुए ऐसे और प्रोग्राम आयोजित करने की योजना बना रहा है। सियांग ट्रस्ट ने कल अपर सियांग जिले के मिलांग गांव में एक मुफ्त हेल्थ कैंप लगाया जिससे दूरदराज के गांव के लोगों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकी। बुजुर्गों और बच्चों समेत 60 से ज्यादा ग्रामीणों ने इस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। लोगों की मेडिकल जांच की गई और जरूरत के हिसाब से दवाइयां दी गई। हेल्थ स्क्रीनिंग के तहत लोगों का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल भी चेक किया गया। स्थानीय लोगों ने इस हेल्थ कैंप को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। पबुमपारे जिले के गुंगू खामिर स्थित बैम्बू एंड कैन टेक्नोलॉजी सेंटर में बीएससी फॉरेस्ट्री के छात्रों के लिए 9 से 20 सितंबर तक एक इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत अरुणाचल प्रदेश बैम्बू रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम का मकसद छात्रों को बांस और कैन टेक्नोलॉजी, रिसोर्स मैनेजमेंट और इससे जुड़ी गतिविधियों का प्रैक्टिकल अनुभव देना है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य बांस और कैन के संसाधनों और उनके टेक्नोलॉजी से जुड़े इस्तेमाल का प्रैक्टिकल अनुभव देकर क्लासरूम की पढ़ाई और फील्ड लेवल के काम के बीच की दूरी को कम करना है। अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पासीघाट ने आज वंदे मातरम एट 150 नाम से एक मिनी मैराथन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में महीने भर चलने वाले समारोह का हिस्सा था। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: This is Akashvani Itanagar, the news read by Nara Goyang. Prime Minister Narendra Modi today said pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Addressing the open session of the BRICS summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping. In the session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi also emphasized timely identification of challenges, preparation for them and taking immediate action. He said that a consensus has been reached on a BRICS integrated early warning system for the prevention of and response to infectious diseases. He added that early warning data integration guidelines have been formulated. For disaster management, Mr. Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed inclusivity in the adoption of the technology. In a significant milestone for Arunachal Pradesh power sector, the 33 kV Miao Kharsang transmission line was successfully charged yesterday, marking an important milestone in strengthening power connectivity and improving the reliability and quality of electricity supply in the eastern region of Arunachal Pradesh. Sharing the news in a social media post, Deputy Chief Minister Chonamay informed that the achievement is part of the comprehensive scheme for strengthening of transmission and distribution system, under which 97 out of 239 project elements have now been successfully charged. He stressed that the commissioning of the Miao Kharsang line will further strengthen the power network serving Miao, Dyun, Kharsang and adjoining areas, supporting improved connectivity and creating a stronger foundation for the region's socio-economic development. A week-long exposure tour of Gujarat for a 9-member media delegation from Arunachal Pradesh concluded yesterday. Organized by Press Information Bureau, Itanagar, the tour covered key institutions and development projects including Kocharab Ashram, Sabarmati Riverfront, Seft University, Dolera Special Investment Region, National Forensic Sciences University, Gift City, Amul Dairy, Gati Shakti Vishwa Vidyalaya and the Statue of Unity. The delegation also witnessed emerging technologies including an AI humanoid robot and integrated with officials and stakeholders. PIB Itanagar Joint Director Utsav Parmar said such exposure programs help

नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8 बजे है। श्रोताओं अब पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत सुनिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमे। इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश आज हमें प्राप्त हुआ है पैगाम हो के पेमटशी तेन सोमो फुंसो वामो सिरिंग कर्मो तेन चिटन और थमड्रमजी से। इन्होंने फरमाइश किया है चित चोर फिल्म से यह गीत येसुदास की आवाज में। इस गीत को लिखा एवं संगीत दिया है रविन्द्र जैन ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस नवकर निर्मला नवकर और विशाल नवकर से और मालकापुर के नारायण इंगले सोपन तयादे और आशीष मुरेखर से। इन्होंने फरमाइश किया है मधुमती फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए कुछ फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर, जो हमें प्राप्त हुआ है वादिंग खेड़ा पंजाब के मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा से। इन्होंने फरमाइश किया है ससुराल फिल्म से आए गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है पद्मा टॉकिस नापा नगर मध्य प्रदेश के सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह से और जनकपुरी शरणपुर के जॉन डी कैस्ट्रो, पर्ल डी कैस्ट्रो, रोजी डी कैस्ट्रो और विलिस डी कैस्ट्रो से इन्होंने फरमाइश किया है गाइड फिल्म से यह गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है एसडी बर्मन ने।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश का, जो हमें प्राप्त हुआ है तोरोवल नवन शहर पंजाब के गगनदीप ठंडी, तृप्ति कुमारी ठंडी, डॉक्टर प्रियंका ठंडी, डॉक्टर प्रशांत ठंडी, डॉक्टर प्रियम ठंडी, बेबी वामिका और वानी ठंडी से। इन्होंने फरमाइश किया है नदिया के पार फिल्म से गीत हेमलता और जसपाल सिंह के आवाजों में। इस गीत के लेखक एवं संगीतकार है रविन्द्र जैन।

श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होता है। चूंकि हमारे पास थोड़ा समय और बाकी है, आइए हम एक और गीत सुनते हैं, क्या यही प्यार है फिल्म से।

श्रोता अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत का नाम और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8:30 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैंप, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9।

0: नमस्कार श्रोताओं, घड़ी में बज चुके हैं 8:30 और समय हो गया है आपके पसंदीदा खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आकाशवाणी के स्टूडियो से मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती। हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल मैदान की हर खबर के साथ, जिसमें हम आपको देंगे हर मैच का अपडेट और हर मैदान का हाल। तो चलिए बिना देर किए रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों का। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 6वीं बार जूनियर एशिया कप जीता। महिला टीम ने भी खिताबी हैट्रिक लगाई। दोनों ने विश्व कप का टिकट पक्का किया। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में जारी। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एलेना रायबाकिना ने कल महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। तो श्रोताओं, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं चीन के मोकी के मैदान पर, जहां हमारे जूनियर हॉकी खिलाड़ियों ने आज वो कर दिखाया है जिस पर पूरे देश को नाज है। मोकी में भारतीय तिरंगा पूरी शान से लहरा रहा है, क्योंकि हमारी महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने जूनियर एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला टीम ने चीन को 1-0 से हराकर जहां खिताबी हैट्रिक लगाई, वहीं हमारे गबरू जवानों यानी कि पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर 6वीं बार इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। पूरे मैच का हाल जानते हैं और सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: सानिका चंद्रकांत माने के गोल की बदौलत भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर खिताबी हैट्रिक लगाई है। मौजूदा चैंपियन भारत के लिए सानिका ने 17वें मिनट में निर्णायक गोल किया। पहले क्वार्टर में दोनों टीम गोल नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर के शुरू होने के 2 मिनट बाद सानिका ने शानदार सूझबूझ दिखाते हुए गोल किया। चीन को बराबरी करने के लिए एकमात्र अवसर पेनल्टी कॉर्नर से मिला, लेकिन चीन की टीम उसे भुनाने में नाकाम रही। भारत ने अंतिम क्वार्टर तक चीन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया और 1-0 से जीत दर्ज कर ली। पूरे टूर्नामेंट में बिना कोई मैच हारे एलीट पूल में 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ शीर्ष पर रहने के बाद भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। वहीं फाइनल में चीन को हराकर लगातार 3री बार खिताब बरकरार रखा। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार 4थी और कुल 6वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। अजीत यादव, अनमोल एक्का, प्रभदीप सिंह और आशु मौर्य ने गोल किए, जबकि कोरियाई टीम के लिए एकमात्र गोल ली मिनह्योक ने किया। अजीत ने 9वें मिनट में भारत के लिए पहला गोल किया, जिसके बाद इक्का ने 13वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त को 2 गुना कर दिया। पहले क्वार्टर के अंत तक भारत 2-0 से आगे हो गया। प्रभदीप ने 21वें मिनट में 3रा गोल किया। भारत ने हाफ टाइम तक कोरियाई टीम पर 3-0 की बड़ी बढ़त बना ली। आशु ने 50वें मिनट में

0: और गोल करके टीम की बढ़त को 4-0 कर दिया। इसके बाद मिनह्योक ने 54वें मिनट में कोरियाई टीम के लिए गोल किया, लेकिन उनका ये एकमात्र गोल कोई खास असर नहीं डाल सका और भारत ने 4-1 से मैच जीतकर छठी बार ये खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया। देवेंद्र त्रिपाठी, स्पोर्ट्स कैन।
1: इस जीत के साथ दोनों ही टीमों ने जूनियर विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है, यानी कि जूनियर विश्व कप के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में सुना। इसके साथ ही भारत ने चौथी बार यह खिताब जीतकर पाकिस्तान के लगातार 3 खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और इससे पहले भारतीय टीम ने 2015, 2023 और 2024 में खिताब जीते थे। इस शानदार उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 3 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1.5 लाख रुपए के पुरस्कार राशि देने की भी घोषणा की है। तो बहुत जायज है कि इस तरह कि जो प्रोत्साहन राशि मिलते हैं उससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ता है। तो शुरुआत अच्छी रही हमारी आज की खेल जगत में, लेकिन अगर आपको लगता है कि आज भारत ने सिर्फ हॉकी के मैदान पर ही परचम लहराया है तो जरा अपनी नजरें जापान की तरफ भी घुमाइए, क्योंकि जहां हौसले बुलंद हो वहां पदक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। हम बात कर रहे हैं जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल की, जहां हमारे स्टार खिलाड़ी और 6 बार के विश्व चैंपियन प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। पुरुष डबल्स SL3 SU5 में प्रमोद ने सुकांत कदम के साथ रजत पदक भी हासिल किया।
2: छह बार के विश्व चैंपियन प्रमोद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स SL3 के फाइनल में अपने ही देश के उमेश कुमार को 30 मिनट में 21-16 21-8 से हराया। इसके बाद उन्होंने पुरुष डबल्स SL3 SU5 के फाइनल में सुकांत कदम के साथ जोड़ी बनाई। हालांकि इंडोनेशिया के हिकमत रमदानी और फ्रेडी सेतियावान से 5-21 15-21 से हार के बाद भारतीय जोड़ी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। कदम के लिए यह टूर्नामेंट खास रहा क्योंकि 12 वर्षों के करियर में उनके कुल पदकों की संख्या 100 हो गई। भारत ने विभिन्न वर्गों में कई अन्य पदक भी हासिल किए। चिराग बरेठा ने सिंगापुर के वेई मिंग टे के साथ पुरुष डबल्स SU5 में स्वर्ण पदक जीता। शशांक कुमार ने 2 कांस्य पदक जीते। दीप रंजन बिसोई और कुलदीप महकून ने भी पुरुष डबल्स SL3 SU5 में कांस्य पदक जीता, जबकि तकर बिरी और हर्षित चौधरी इसी वर्ग में तीसरे स्थान पर रहे। अभिजीत सखुजा ने पुरुष सिंगल्स SL3 में कांस्य पदक जीता। स्पोर्ट्स कैन के लिए प्रशांत कुमार।
1: बैडमिंटन की बात हो रही है जहां एक तरफ स्वर्णिम सफलता हासिल की है प्रमोद भगत ने, तो वहीं पे बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 15 साल की तन्वी पत्री ने भी लड़कियों के अंडर 17 सिंगल्स का खिताब जीता। रोमांचक फाइनल मैच में आज तन्वी ने भारत की ही शाइना मणिमुथु को 11-15 15-10 15-12 से शिकस्त दी। अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: तन्वी ने इस साल पोंटियानक अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था और इसके बाद बेंगलुरु में अखिल भारतीय जूनियर अंडर 19 बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट भी अपने नाम किया। अपने करियर में 2024 में अंडर 15 एशियाई खिताब के साथ तन्वी ने इस बार महाद्वीपीय अंडर 17 खिताब भी जोड़ लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त तन्वी ने फाइनल तक पहुंचने के दौरान कई मुश्किल मैच खेले। तन्वी की जीत के साथ अंडर 17 लड़कियों के सिंगल्स का खिताब लगातार दूसरे साल भारत के पास बरकरार रहा। 2025 में दीक्षा सुधारकर ने यह ऐतिहासिक खिताब जीता था। पिछले साल अंडर 15 एशियाई खिताब जीतने वाली मणिमत्थू को इस बार रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अंडर 15 वर्ग में भी भारत के खाते में एक और पदक जुड़ा। लड़कों की डबल्स जोड़ी आदित्य सिंह नेगी और तन्मय वर्मा ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही भारतीय दल का इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में सफल अभियान समाप्त हुआ। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब कोर्ट के इस शटल गेम से निकलकर सीधे रुख करते हैं उस खेल की तरफ जो हम भारतीयों की रग रग में दौड़ता है, यानी कि क्रिकेट। तो आज एक नहीं बल्कि दो जगह क्रिकेट का रोमांच चरम पर है और इस वक्त हमारी नजरें टिकी हुई है दुबई पर, जहां महिला T20 एशिया कप का महामुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच

0: खेला जा रहा है। सात बार की चैंपियन भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है और ताजा समाचार मिलने तक हमारी शेरनियां क्रीज पर डटी हुई है। इस वक्त हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशेष, क्या है ताजा अपडेट मैच को लेकर के?
1: जया, भारतीय टीम को शुरुआत काफी धमाकेदार मिली है। लगभग 10 के औसत से भारतीय टीम ने 8.3 ओवर में 84 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा अभी क्रीज पर डटी हुई हैं। भारतीय टीम ने कोई भी विकेट नहीं गंवाया है। शफाली वर्मा 27 गेंदों पर 58 रन बनाकर 8 चौके और 2 छक्के लगा चुकी हैं। वहीं स्मृति मंधाना पारी को एंकर कर रही हैं, जिन्होंने 25 गेंदों पर 31 रन बनाए हैं। 3 चौके और 1 छक्के उनकी पारी में शामिल हैं। वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो श्रीलंका की ओर से चमारी अट्टापट्टू, जो सबसे बड़ा खतरा मानी जा रही थी भारत के लिए, भारतीय टीम ने उन पर ही अटैक करके 1 ओवर में 20 रन लगाए हैं स्कोरबोर्ड पर।
0: तो जिस तरह से दोनों ही टीम है अभी तक मैच में, पूरे टूर्नामेंट में देखिए तो कोई भी हार नहीं मिली है इन्हें, अब तक अजय रही है और फाइनल तक पहुंची है। अगर हम एशियन, अगर हम पूरे सफर की बात करें भारतीय टीम का, तो कैसा सफर रहा पूरे टूर्नामेंट में?
1: भारतीय टीम का सफर जो रहा है जया, बेहद शानदार रहा है। जैसा आपने बताया कि टीम जो है, ये दोनों ही टीमें अजेय रही हैं इस टूर्नामेंट में। और पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 94 रन से, दूसरे मुकाबले में हांगकांग को 137 रनों से, और उसके बाद अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 55 रन पर ऑल आउट करके 7 विकेट से मुकाबला जीत लिया था। सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने टक्कर देने का प्रयास जरूर किया था भारतीय टीम को, लेकिन 40 रन से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। भारत अपने 8वें खिताब की जद्दोजहद कर रहा है। इससे पहले 4 ओडीआई और 3 T20 प्रारूपों में भारत कुल 7 बार ये खिताब अपने नाम कर चुका है।
0: बिल्कुल, और इस बीच भारत और अफगानिस्तान के बीच भी 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच शुरू हो चुका है। टॉस भारत के पक्ष में रहा, कप्तान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच का क्या अपडेट है अभी?
1: जय, अगर भारत और अफगानिस्तान के मुकाबले की बात करें तो 14 ओवर में 87 रन पर 5 विकेट हो चुके हैं अफगानिस्तान का स्कोर। अजमतुल्ला उमरजाई और मोहम्मद नबी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उमरजाई 27 गेंदों पर 26 रन, वहीं नबी 22 गेंदों पर 16 रन। ये दोनों स्कोर ये दर्शाते हैं कि भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पर रखा हुआ है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती ने एक एक विकेट लिया और एक विकेट जो है वो रनआउट के तौर पर हुआ है।
0: बिल्कुल, अगर एशियन गेम्स के पहले अगर हम देखें तो सीरीज कितनी महत्वपूर्ण लगती है विशेष, क्योंकि भारतीय टीम चाहेगी कि अपने हालिया फॉर्म को वो बरकरार रखे।
1: जय, अगर बात करें तो ये सीरीज जो है वो एक वार्म अप के तौर पर साबित होगी अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि एक अफगानिस्तान है जो कड़ी टक्कर दे सकता है भारतीय टीम को, क्योंकि इसके बाद भारत को एक मुकाबला जापान से खेलना है और फिर सीधे एशियन गेम्स के क्वार्टर फाइनल में मुकाबला होगा, जहां वो पहले ही अपनी जगह बना चुकी है रैंकिंग के आधार पर। तो ये जो मुकाबला है, ये जो सीरीज है, ये भारत के लिए एशियन गेम्स का जो तैयारी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, तो अब क्रिकेट के इस लाइव अपडेट्स के बीच आपको ले चलते हैं श्रोताओं दुनिया के उस कोने में जहां टेनिस कोर्ट पर आज रात एक नया इतिहास लिखे जाने की तैयारी हो रही है। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज रात अमरीका के बेन शेल्टन और जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव आमने सामने होंगे। 23 वर्षीय शेल्टन अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में खेलेंगे और 2 दशक से अधिक समय में कोई बड़ा सिंगल्स खिताब जीतने वाले पहले अमरीकी खिलाड़ी बनने की कोशिश करेंगे। वहीं 3 महीने पहले अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले ज्वेरेव लगातार तीसरी बार किसी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने जा रहे हैं। यह उनका दूसरा यूएस ओपन फाइनल होगा जो उनके पहले फाइनल में पहुंचने के 6 साल के बाद हो रहा है। तो सेल्टन के पास 2 दशक के बाद कोई बड़ा खिताब जीतने वाला पहला अमरीकी बनने का मौका है। और महिला सिंगल्स की बात करें तो इसका फैसला कल रात ही हो चुका है, जहां कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने आर्याना साबालेंका को हराकर पहली बार यूएस ओपन का ताज अपने सिर सजा लिया है। यूएस ओपन की इस बड़ी खबर के बाद अगर हम बात करें तो उन कोर्ट्स की जहां आज का दिन भारतीय फैंस के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव भरा भी रहा है। पहले बात वियतनाम ओपन बैडमिंटन की, जहां महिला सिंगल्स के फाइनल में भारत की ईशा रानी बरुआ को थाईलैंड के खिलाड़ी से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें उप विजेता रहकर संतोष करना पड़ा। कुछ ऐसा ही मिला जुला भाग्य कोर्ट पर हमारी स्क्वाश सनसनी का भी रहा। कतर क्लासिक स्क्वाश प्रतियोगिता में भारत की अनाहत सिंह ने बेल्जियम की टिन्ने गिलिस को 5वें गेम तक जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन अंत में अनुभव की जीत हुई, यानी कि उनका एक्सपीरियंस अच्छा था।

0: उनसे हार का सामना करना पड़ा अनाहत को। पुरुष सिंगल्स में भी अभय सिंह और वीर चोटरानी को अपने शुरुआती दौर के मुकाबलों में निराशा हाथ लगी। लेकिन खेल का नाम यही है, कभी जीत कभी सीख, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, पर मैदान पर देश के लिए जान लड़ाने का यह जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए। तो एक बार चलते चलते मैच का ताजा अपडेट्स ले लेते हैं। विशेष
1: जय, अफगानिस्तान ने 14.3 ओवर में 93 रन बना लिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। और अगर वुमेन्स एशिया कप की बात करें तो भारतीय टीम जो है शानदार प्रदर्शन उनका जारी है, लगभग 10 ओवर में उन्होंने 98 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के। तो ये मुकाबला जो है भारतीय टीम की झोली में आता नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, इस रोमांचक मोड़ पर अब वक्त हो चला है इन सभी बड़ी खबरों के लाइव स्कोर्स को अभी यहीं समाप्त करने का। हम कल मिलेंगे फिर इसी समय, तो स्पोर्ट्स स्कैन में इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स स्कैन की ईमेल आईडी यानी sportsscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं

0: उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता,

0: समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
2: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तू तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।

0: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
1: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
3: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री